0: For locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: कार वैन ट्रक दा कम होवे ता याद रखो रॉयल ऑटो सेंटर रिलायबल अफोर्डेबल अते ऑनेस्ट सर्विस जिथे कि मैं भी गड्डियां नु लेके जाना रिपेयर दे लई रॉयल ऑटो

ब्यूटी इंडस्ट्री की दुनिया में अपना करियर बनाने बारे सोच रहे हो तो हो जाओ टेंशन फ्री अमायरा एकेडमी हेयर एंड एस्थेटिक्स तो हाडे ऐसे करियर के ड्रीम्स नु दिखाने के सही राह जो प्रोवाइड करते हैं सब तो बेहतरीन ते कंप्लीट कोर्स पैकेज पूरे कैनेडा विच हेयर स्टाइलिंग डिप्लोमा मेडिकल एस्थेटिक डिप्लोमा ये सब दे नाल नाल अमायरा एकेडमी अपने यूनिक ते सुपर सैटिस्फाइंग हेयर सर्विसेज एंड स्पा ले भी जाने जाते हैं हुणे कॉल करो 9053996110 ते और विजिट 114 कैनेडी रोड यूनिट 2 ब्रैम्पटन ओंटारियो ब्रैम्पटन विच जे तुसी लभ रहे हो बेस्ट क्वालिटी ते इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स ता फिर तुहाडी टेंशन हुण छूमंतर हो जावेगी आओ ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी ते जिथे मिलदे ने फ्रेश वेजिटेबल्स स्पाइसेस स्नैक्स ग्रोसरीज ते किचन आइटम्स सब इको थां ते एंड माइंड ब्लोइंग वैरायटी नाल तुहानू लघु शॉपिंग दा मजा असली पंजाब वर्गा याद रखो 100 कैनेडी रोड साउथ ब्रैम्पटन या फिर कॉन्टैक्ट कर सकते हो 9052304800 ते या ईमेल करो BramptonCashandCarry2023@gmail.com ते स्वाद दे मामले विच कॉम्प्रोमाइज कदे भी नहीं करना चाहिदा इसे लिए तो हाडे लिए है विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स 1999 तो लेके ब्रैम्पटन नू सर्व कर रहे हन विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स लुत्फुट हाउस स्वादिष्ट पंजाबी खाने दा बुफे डाइन इन टेक आउट केटरिंग लंच ते डिनर सारा कुछ है स्वीट्स ते स्नैक्स दी वड्डी कलेक्शन भी है जो कि तुहानू जरूर पसंद आएगी ते फिर देर किस गल दी आज ही कॉल करो 905-450-3333 एड्रेस विलेज ऑफ इंडिया 114 कैनेडी रोड साउथ Brampton.

0: वटाविए ना पग है पछान पंजाबियां दे
1: वाह वाह क्या बात
0: दाग पग नू कदे भी लावीए

0: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: जाते अमर विरसे दी बुक्कल तू या पंते संतुले सफर का हम सफर सर जा विरसा
2: गीत संगीत देश दुनिया दिया ताजा तरीन जानकारियां ना लबरेज महकान दी सौगात वंडदा सर जा विरसा
1: सोमवार तो शुक्रवार 5:30 AM ते सवेरे 4 बजे तो 5 बजे तक
3: बिजनेस डे प्रचार ते पसार ले संपर्क करो
2: सांझा विरसा दी टीम 647-835-5294
4: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह अमृत वेले दा जागना जे कोई जागे नित एक वधेंदी आरजू दूजा साहेबा वे चित दे महावाका अनुसार सारे ही नगर निवासियां नु बेनती कीती जांदी है भाई अमृत वेला हो गया 4 बज गए उठो इशनान पानी करो गुरु घर च हाजरियां लवाओ ते गुरु दे जस गाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

0: सर्दी के दिन आने वाले हैं। अगर आप ओंटारियो में रहते हैं और आपकी आमदनी तय सीमा के अंदर है तो आप एनब्रिज गैस से मुफ्त इंसुलेशन, ड्राफ्ट प्रूफिंग और दूसरी सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए enbridgegas.com/winterproofing पर जाएं। नियम और शर्तें लागू।
1: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: पर कृपा तो हुई नहीं।
1: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ली पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया।
2: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता।
3: रेडियो आवाज,
0: रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 बजे तक, एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक प्राइम टाइम ते। वधेरे जानकारी लई तुसी कॉल कर सकते हो 416-518-3200।
4: पापा पापा सुनते क्यों नहीं, चॉकलेट लेनी है।
5: अजी सुनते हो, कहाँ गुम हो?
6: अरे महेश अभी तक ऑफिस नहीं आए, पता नहीं मीटिंग थी। हेलो हेलो हेलो।
2: जब मैं रेडियो आवाज सुनता हूँ तब तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बम टू बम ट्रैफिक एंड बम टू बम कॉल्स, ऐसा ही होता है जब आप सुनते हैं हर सुबह 9 to 10 मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे 11 to 1 रेडियो आवाज।
7: ऑटो ओन

0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 647702 V23
1: लाइसेंस नंबर 10394।
2: ब्रैम्पटन वासियों, हुण बदलाव दा समां, हुण तुहाडी आवाज सिटी हाल तक पहुंची। सुरक्षा पहली तरजीह, वध रहे प्रॉपर्टी टैक्सां ने परिवारां ते बहुत वड्डा बोझ पाया है। मैं टैक्सां विच राहत लई पूरी पूरी कोशिश करांगा। हद तों वध वधी हुई माइनर वेरियस फी नूं घटाउण लई आवाज़ बुलंद करांगा ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਵੇ। ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਤੱਕ। ਪ੍ਰੇਮਪਾਲ ਗਿੱਲ, ਰੀਜਨਲ ਕੌਂਸਲਰ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 2 ਅਤੇ 6 ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ। ਧੰਨਵਾਦ।
3: ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल वार्ड 9 अते 10 लई भरोसे योग उम्मीदवार डॉक्टर आजाद गोयत नूं अपना कीमती वोट पाओ।
4: डॉक्टर आजाद गोयत जिन्ना मुद्दा लई जनता दा साथ देणगे, उन्हां च अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी अते पब्लिक कंसल्टेशन, प्रॉपर्टी टैक्सेस विच कटौती, क्राइम ते एक्सटॉर्शन ते कारवाई, वड्डे बिजनेसमैन अते पॉलिटिशियंस दा नेक्सस तोड़ना, लोकल डिवेलपमेंट, नाली वार्ड नंबर 9 ते 10 लई गो स्टेशन नाल कनेक्टिविटी, फुल पुलिस स्टेशन, इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट, ग्रीन स्पेसिस दी मेंटेनेंस शामिल है।
3: इलेक्शन डेट 26 अक्टूबर 2026, एडवांस वोटिंग ऑन 9, 10, 11, 16 and 17 अक्टूबर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट azadgoyat.ca। पेड फॉर एंड ऑथराइज बाय कैंपेन ऑफ डॉक्टर आजाद गोयत।
5: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕੋਂਬੋ ਪਲਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ $99 ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 647-365-2340।
6: You're listening to Guntas Radio on AM 530 from 10 to 11 a.m. Monday to Friday with Jazz Tagar, your favorite show.

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: मैं हरसिमरन सिंह, साडा शहर ब्रैम्पटन वध रहा है पर की साडियां सेवावां भी उसे रफ्तार नाल वध रहीआं ने। पुलिस, पैरामेडिक्स, रीजनल रोड्स, पानी अते सुरक्षा सेवावां लई तुहाडी आवाज रीजन तक पहुंचाउणा मेरी तरजीह है। वार्ड 9 अते 10 तों आई एम कैंडिडेट फॉर रीजनल काउंसलर आउण वाली 26 अक्टूबर नूं। वोट फॉर चेंज, वोट हरसिमरन सिंह।
2: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ हरसिमरन सिंह।
3: आज
4: बॉलीवुड मूवीज ने टीवी शोज वेब सीरीज हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल इंजॉय करने वर्ल्ड्स बेस्ट हाईएस्ट क्वालिटी वाला आईपीटीवी बॉक्स है। ते नाले टिलो वीडियो को गुरबानी रेडियो भी है ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री। होर दस क्या चाहिए। जी सेलिब्रेशन 40 इयर्स इन एंटरटेनमेंट बिजनेस।
5: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
4: पर टिलो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ। एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 जां tillovideo.com। होर कोई सेवा।
6: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਪਲਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਿੰਗਸ, ਬੈਸਟ ਫੋਨ ਪਲਾਨਸ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲਾਨਸ ਚ ਸੇਵਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨੋ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲੇਟੈਸਟ ਫੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕਵਰੇਜ ਨਾਲ, ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਸੇਵ ਟੂਡੇ, ਇਟਸ ਦੈਟ ਈਜ਼ੀ। ਆਪਣੀ ਨੀਅਰੈਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ cellularpoint.ca ਤੇ ਵੇਖੋ। ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਮੋਰ ਫੋਨਸ, ਮੋਰ ਪਲਾਨਸ, ਮੋਰ ਚੋਇਸ।
7: ਘਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਵੀ ਹਾਈ ਐਂਡ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ।
8: ਹਾਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਹੈ ਨਾ। ਫ੍ਰਿਜ, ਸਟੋਵ, ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ, ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ, ਐਲਈਡੀ ਟੀਵੀਜ਼, ਸਭ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕੀ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਖਰੀਦੋ, ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਜ ਦੇ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ 905-450-2828-905-450-2828।
9: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
10: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन, इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888, दैट्स 905-460-8888।
9: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस, बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
11: ओहो यार, इना इंश्योरेंसा ने ते धुआं कढ़ाता, वधिया ते जायज रेट किथों मिलेगा?
12: टॉप फाइनेंशियल इंक तो, जो अपनियां बेहतर ते भरोसेमंद सेवावां लई जाने जांदे ने।
13: क्रिटिकल मॉर्गेज, आरईएसपी, आरआरएसपी, विजिटर इंश्योरेंस, सुपर वीजा, स्पेशल डिसेबिलिटी प्लान फॉर ट्रकर्स। जे तुहाडे कोल 20 नालों ज्यादा ड्राइवर ने तां तुहानूं अनबीटेबल प्राइस लेके देंगे।
12: कॉल करो 20 सालां दे तजुर्बे वाले सुरजीत सिंह पड्डा जी नूं 647-300-3100, 647-300-3100,
13: या मिलो 70 डेल्टा पार्क बुलेवार्ड, यूनिट 11, ब्रैम्पटन।
14: मैं बलजिंदर सिंह नहल, अपने ब्रैम्पटन ने सब कुछ देखा है। सड़कां तो पार्कां तक, ट्रैफिक तो सिटी सेवावां तक, क्राइम तो करप्शन तक, चंगा शहर सिर्फ वादियां नाल नहीं काम नाल बनता है। तुहाडे मुद्दे सिर्फ चोणां तक नहीं सिटी हाल तक लेके जाना मेरी जिम्मेवारी है। वोट फॉर चेंज, वोट फॉर बलजिंदर सिंह नहल, सिटी काउंसलर कैंडिडेट, वार्ड 9 एंड 10।
2: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल।
15: यू आर लिसनिंग टू पंजाबी वर्सा मंडे टू फ्राइडे 11 AM टू 12 PM। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 647-448-1000। टोरंटो'स नंबर 1 स्टेशन AM 530। पंजाबी वर्सा।

आशिक लोग है ना जेडे मुहब्बत दे विच इश्क दे विच उना दी उना नू जान छड़ के चली गई है ओ तां नहीं मिस करदे क्वाली नाइट नू। आ जाओ भाई दिल मर जाने नू की होया।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1115।
1: इंतजार हुण खत्म होया। रीमैक्स गोल्ड रियल्टी दे गौडी खुमाल लेके आए हन साउथ कैल्डन विच प्रीमियम रिटेल अते ऑफिस स्पेस खरीदण दा एक होर सुनहरा मौका। पेश है कैल्डन कमर्शियल सेंटर, हाईवे 10 अते हाईवे 410 दे प्राइम इंटरसेक्शन ते 15 एकड़ विच बन रहा एक नवा कमर्शियल डेवलपमेंट। रिटेल अते ऑफिस यूनिट्स हुण सेल लई अवेलेबल हन। कैल्डन दी इस नवी कमर्शियल डेस्टिनेशन विच अपनी स्पेस अज ही पक्की करो। अपनी यूनिट अज ही बुक करन लई साडी टीम नाल कॉन्टैक्ट करो।
2: मैं हरसिमरन सिंह, साडा शहर ब्रैम्पटन वध रहा है पर की साडियां सेवावां भी उसे रफ्तार नाल वध रहियां ने। पुलिस, पैरामेडिक्स, रीजनल रोड्स, पानी अते सुरक्षा सेवावां लई तुहाडी आवाज रीजन तक पहुंचाउणा मेरी तरजीह है। वार्ड 9 अते 10 तों आई एम कैंडिडेट फॉर रीजनल काउंसलर। आउण वाली 26 अक्टूबर नूं वोट फॉर चेंज, वोट हरसिमरन सिंह।
3: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ हरसिमरन सिंह।

बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो इसीलिए आपने अपने टिकट बुक कर लो ताकि इस बार इस शो मिस ना करो। सो मिलते हैं फिर 11 अक्टूबर नो टोरंटो रोज थिएटर शाम 7 बजे। सत श्री अकाल।

0: ताजिया सब्जिया फ्रेश फल फ्रूट वधिया ग्रोसरी ते इंडिया तो आया तो हड़ा मन पसंद समान मिलेगा हुण वधिया रेट्स ते क्योंकि तो हड़े अपने शहर विच आ गया अनाज मान रोज दी ग्रोसरी होवे चावल दाला आटा देसी घ्यो मसाले टी स्नैक्स या फिर इंडियन किचन दा कोई भी जरूरी समान सब कुछ मिलेगा अंडर वन रूफ फ्रेशनेस वैरायटी क्वालिटी ते वधिया प्राइसेस ले अज ही विजिट करो अनाज मान एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड रोड दे कॉर्नर ते 6141 मेफील्ड रोड यूनिट
1: नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज
2: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा कॉल 9054608888 दैट्स 9054608888
1: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ
3: मित्रां दे जंक्शन ते
4: ओ केड़े जंक्शन ते
5: इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते
3: रात लगियां महफलां रे
5: भाई महफलां ते रोज ही लगदियां ने टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते आओ ताजा स्वादला खाओ ते 100% दी कैपेसिटी वाले शानदार बैंक्वेट हॉल विच अपनियां खुशियां दे जश्न मनाओ टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन करदे ने केटरिंग बिग और स्मॉल विद लाइव फूड ट्रक 11 AM टू 6 PM ऑल ड्रिंक्स 50% ऑफ टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते कॉल करो 6474940404 4094049 4040 टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन
6: ओ पंजाबी बोले ना ते मैं इंग्लिश विच अड़दा सी ओ मेरी लुक ते मरदी सी ते मैं ओदे लक ते मरदा सी सत श्री अकाल जी मैं हां थोड़ा अपना रोशन प्रिंस ते तुसी सुन रहे हो वतनों दूर रेडियो

0: ऐ मेरी हमरा मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: देख, आपसे रिश्वत लेनी है ना, मैंने आगे रिश्वत देनी है, साफ काम है, साफ तरीके से कर रहे हैं, बिना मीठी बातें के। 8 साल में हजारों को असिस्ट कर चुके हैं, आज भी 8 नहीं, अभी 3 और आ गए, 11 बंदों के खाते में फंडिंग दर्ज गिर चुकी है, आके चेक कर लीजिए ऑफिस में।
1: जी सर, एक चीज दसो कि जेहड़े कोर्सेज ने, केड़े केड़े कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, क्लासेज किन्ने किदां लगदियां ते तुहाडी फीस किन्नी है?
0: हाँ जी, क्लासेज आप 20 घंटे आपने ऑनलाइन देना है, लैपटॉप पे सेल्फ स्टडी वाले कोर्सेज है, खुद ही आप स्लाइड पढ़ते हैं, स्किल हासिल करें, अकाउंटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट जैसे सोखे जो कोर्सेज में, हम हार्ड कोर्स में डील ही नहीं करते, हमें आपकी गाली नहीं खानी, इसलिए हम इतने सारे लोगों को असिस्ट कर पाए हैं। फीस कितनी है काम होने के बाद? $199 फ्लैट फीस है, कोई हिडन फीस कुछ नहीं है सर, काम होने के बाद लेते हैं। मैंने भी 120 बंदों से फीस लेनी है, मैंने किसी को पैसे नहीं देने, मैंने लोगों से फीस लेनी है। बैच स्टार्ट हो रहा है 14 अक्टूबर को, मिस ना करें, नहीं तो आपको आपकी ही फंडिंग 1.5-2 महीने डिले हो जाएगी। गवर्नमेंट कट्स कर रही है, पहले फंडिंग हासिल कर ले, नहीं तो जैसे एयरपोर्ट बिक रहे हैं वैसे के आप तक गवर्नमेंट फंडिंग है बंद कर दे। नंबर 437-264-3175, 437-264-3175 कॉल करो, 437-264-3175, 437-264-3175 नंबर एक और बार प्लीज, 437-264-3175।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया,
2: शुक्रिया जी, मेहरबानी। और मैं जो भी इन्होंने देखता हूँ, मिलता है ना, ऑलवेज ही हैप्पी स्माइली करते रहते हैं ना, पॉजिटिव गाई है बहुत। तीन नंबर एक बारी दे दिया ना
1: जी, बिल्कुल तुसी नंबर जरूर नोट करो, यूनिक ग्लोबल एडवाइजरी तो सारांश नागपाल जी, 437-264-3175
2: जी। रेडियो प्रोग्राम देश प्रदेश में जुड़े हुए हैं दोस्तों, अगला गीत कह नहीं सकते बाहर हैगी है, मॉर्गेज किंग वालों तक पहुँचाई जा रही है, और परमजीत सिंह होरां दा लोन लेना, वो कहिंदे फस्ट मॉर्गेज, सैकेंड मॉर्गेज, लाइन ऑफ क्रेडिट बनाउणी, रीफाइनेंस करवाउणा, एक्विटी बनवाउणी घर दे विच अपनी, प्राइवेट फंड चाहीदा, सेम डे क्लोजिंग चाहीदी है, कोई भी अड़िया वड़िया काम कहिंदे कितें हैगा ले आओ, जो कितों गैस स्टेशन का काम अड़िया, कि कार वाश का काम अड़िया, मैं तुहानूं लोन दवा दूंगा। नंबर इन्हों का हैगा जी 416-804-2015, 416-804-2015, 1200 डेयरी रोड के कोले ने, डॉमगंज के डेयरी के नज़दीक ने, उन्होंने वालों अगला जी भाव वार हैगी जोश वाली पहुँचाई जा रही है, जी ब्रह्म इस प्रदेश में जुड़ी जुड़े हुए हैं। चलो AM 530 तो मतलब ये दोबारा फिर क्लिक करके देखते हैं कि होंगे रेडियो प्रोग्राम देश प्रदेश नाल जुड़े हुए हैं AM 530 तो। टेलीफोन नंबर है स्टूडियो 905-564-6844, कोई गल नहीं, आप नहीं चल रही तो आप होर ला दें, कोई वही है जी रेडियो प्रोग्राम जुड़े रहो।

0: कार एक्सीडेंट्स दे विक्टिम्स ने कदे भी सट लगन अते अपनी जिंदगी बदलन लई नहीं सी आख्या, पर हुण ओ इंसाफ दी मांग करदे हन अते मैनू इह कहंदे होए बहुत ही मान महसूस हो रहा है कि असी कानूनी अदालत विच उस इंसाफ नूं प्राप्त करन च उहनां दी सहायता करदे हां जिस ते ओ सचमुच ही हकदार हन। तुहाडा अपना वकील, वकील ब्रिज मोहन। कॉन्टैक्ट अस एट bridgemohan.com।
1: सेंट्रल मिसिसागा दे रहन वाले हो, ए मौका ना गवाओ। बैलीमोर होम्स वालों डेरी लेन टाउन्स, जल्द ही डेरी रोड वेस्ट अते हरंटेरियो ते आ रहे ने। कंटेम्पररी टाउन होम हाई $700,000 तो शुरू हो रहे ने। सीमित समय ले HST दे विच खास बचत दा फायदा लो। हाईवे 401, 407 अते 410, गो ट्रांजिट, शॉपिंग अते पियर्सन एयरपोर्ट तो सिर्फ कुछ मिनटां दी दूरी ते। सब तो पहले बायर्स दे विच शामिल होण दा मौका ना गवाओ। अज ही रजिस्टर करो ballymorehomes.com, BALLYMORE homes.com।